इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टच.
1: जब तक वे घड़े आग की भट्टी में तपकर पक्के नहीं हो जाते, तब तक वे बहुत नाजुक होते हैं. अगर हवा का एक तेज झोंका आ जाए, या कोई छोटा सा जानवर उनसे टकरा जाए, या पानी की कुछ बूंदें उन पर पड़ जाएं, तो वे घड़े पल भर में टूटकर वापस मिट्टी के ढेर में बदल जाते हैं. उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है. हमारा यह शरीर भी उस कच्चे घड़े जैसा ही है. बाहर से यह कितना भी सुंदर और मजबूत दिखाई दे, लेकिन इसके भीतर की सांसें बहुत नाजुक धागे से बंधी हैं. कबीर साहब आज हमें इसी काया की वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं, ताकि हम इसके रहते रहते जीवन के असली अमृत को पा सकें. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अद्भुत दार्शनिक सूत्र. यहू तन काचा कुंभ है, चोट चहूं दिसी खाई, एक राम के नाव बिन जदी तदी प्रले जाई. यहू तन काचा कुंभ है, चोट चहूं दिसी खाई, यहू तन काचा कुंभ है,

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हट.
1: जब तक वे घड़े आग की भट्टी में तपकर पक्के नहीं हो जाते, तब तक वे बहुत नाजुक होते हैं. अगर हवा का एक तेज झोंका आ जाए, या कोई छोटा सा जानवर उनसे टकरा जाए, या पानी की कुछ बूंदें उन पर पड़ जाएं, तो वे घड़े पल भर में टूटकर वापस मिट्टी के ढेर में बदल जाते हैं. उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है. हमारा यह शरीर भी उस कच्चे घड़े जैसा ही है. बाहर से यह कितना भी सुंदर और मजबूत दिखाई दे, लेकिन इसके भीतर की सांसें बहुत नाजुक धागे से बंधी हैं. कबीर साहब आज हमें इसी काया की वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं, ताकि हम इसके रहते रहते जीवन के असली अमृत को पा सकें. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अद्भुत दार्शनिक सूत्र. यहू तन काचा कुंभ है, चोट चहु दिसि खाई, एक राम के नाव बिन जदी तदी प्रले जाई. यहू तन काचा कुंभ है, चोट चहु दिसि खाई, यहू तन काचा कुंभ है,

0: बाय। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, यहूं तन काचा कुंभ है, यह जो तुम्हारा शरीर है, यह मिट्टी का एक कच्चा घड़ा है, चोट चहुं दिसि खाए। इस कच्चे घड़े पर चारों दिशाओं से लगातार चोटें पड़ रही हैं, समय की चोट, बीमारियों की चोट, चिंताओं की चोट और बुढ़ापे की चोट। हर पल यह काया किसी न किसी संकट से घिरी हुई है। अगली पंक्ति में वे इसके अंत का सच बताते हैं, एक राम के नाव बिन, उस एक परमात्मा के नाम के बिना, उस आत्मज्ञान के बिना जदी तदी प्रले जाई। यह शरीर जदी तदी यानी आज या कल कभी भी प्रलय को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर इसके भीतर राम नाम का अमृत नहीं भरा गया तो यह कच्चा घड़ा बिना किसी अर्थ के मिट्टी में मिल जाएगा। अगर इसे हम दार्शनिक दृष्टि से समझें तो यह दोहा हमारी भौतिक देह की नश्वरता और आध्यात्मिक साधना की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। वेदांत में भी इस शरीर को क्षणभंगुर माना गया है। चोट चहुं दिसि खाई का अर्थ है कि यह संसार दुखों और बदलावों का एक महासागर है, जहां हमारा शरीर हर पल काल के थपेड़े सह रहा है। कबीर समझा रहे हैं कि इस कच्चे घड़े को टूटने से तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इस घड़े को टूटने से पहले इसके भीतर राम नाम यानी शाश्वत चेतना का रस भर लें। जब चेतना जागृत हो जाती है तो शरीर के मिटने पर भी आत्मा का प्रलय नहीं होता, यह अमर हो जाती है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा इस शरीर के अहंकार को छोड़कर इसकी सच्चाई को देखिए। हम जिस काया को सजाने में, जिसके ऐशो आराम में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वह कितनी नाजुक है। वह छोटी सी बीमारी या काल का एक इशारा इसे पल भर में मिट्टी कर सकता है। आज कोशिश कीजिए इस कच्चे घड़े के रहते उस सच्चे नाम को अपनाने की। राम नाम से जुड़ने का मतलब है संसार की नश्वरता को पहचान कर उस अविनाशी परमात्मा की शरण में जाना। इस काया का सदुपयोग कीजिए, इससे सेवा और सुमिरन के काम लीजिए, ताकि जब यह घड़ा टूटे तो उसके भीतर से केवल पवित्रता और आनंद ही बिखरे। समय बहुत कम है, आज ही जाग जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: अपन ट्यून के लिए रेडियो मनभावन 90.8 FM अलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश आपली माणसं।
2: माणूसले माणूस बनावानच ठेका लेल छेत असं जसले आदलुंग समजणार तेसनीच या माणसेसवर कुरघोडी कई आणि वाटी काढत असले अल्लक अल्लक। धरममान तसना पोथी पुराणेश्वरी आणि समदासनं जगणं वागणं बदलायच ताक येरमेस्ताईन। तसनी पोथी परार्थना भजन पूजा अर्चा समदा समदाच होई गय ना अल्लक अल्लक। समदा ते समदाच करतस मातर येन गाई माणूसनच माणूस मनसन जगानच गयना राही गयना श्री। अरे भो अरे वो तू गुर फाई गया कंडली गया जठे नको कंडला ले तठे सांडाई भी गया। इतला ज्ञानी ध्यानी वैसन भी तुले समझी उन नहीं तुना वाल मन तू जानेच नहीं तुन्या भावना तू जानीच नहीं तुनी जान तू जामला नहीं चालू ना वखत तू अटकी राय ना पलगड़ी भूत काय मा मांगला काय मा आणि भविष्य काय मान मौर येणारा काय मान चालू वखत मातली तुनी जान तुन मन तू ब्रह्मा नि स्त्रिया म्हणशीन तुनास म्हणणे तुले दगा दिना आणि मुकला इचारेस ना तून मजार दांगडू मातना तू नाही थांबडू शकना तुना लोभ तू नाही थांबडू शकना तुना मजारला गुस्सा राग खार लोभ माया वासना गुस्सा आयम अरे सा दुश्मन आखो कितलाक दुखना तुना मन मातल्या भरमण्याशा तू इग्या गेले पते पलघडी अथाई तथा तथाई आथा धुंडत राहणार शोधाले धरम धरम मान आन भरोसा थाई टाकी मान त्यान मातल्या भरमवर स्वतःना मेंदू मातल्या शानपणले गाडीशिनी वखतना लोंडामा शिकी सौरी सोदबूत थई तू तुना गुन्हेस्थाई मोठा वध घ्या आणि नजरमा भरत घ्या दुनियाना तवय तुवी दचकना चपापना हाई तू निधी खाऊ भरम भरभराट आणि तू हारकी घ्या यामा तूच तुले स्त्री घ्या जे शे चालू मा त्या लेवीला तडीशिनी दिखाऊ सुकले भुली घ्या अरे बट्ट्या हाऊ उशे उभारी मा तू तुले जे सरना अरे भो तू खांडे खांड जसा अटकत घ्या धरम धरम मजार तसाच अटकी पडना भूत बावलीवालास ना कयप मा तू मारी मोठ आहे की तू ना कयपनी आणि पलगडी म्हणत घ्या मी मोठाशे मी मोठाशे मी मोठाशे अरे तुना मोठा की ना घमेंड बये आपलाच कयपनी पाठ थोपटा गुंता काही स्वतःले शाना समजणारा विद्वान जलमनात त्यासनी मानशे मानशेस मा दगडे टाकानं ज्ञान पलगडी मौर्यानं अरे भो तुना जलमनी सुरुवात कोणले माहिती आई सांगाले छातीनावर आठ टिशनी सांगणारा मौर्य व्हायला लागला तू त्यासनावर भरोसा टिशनी वाला होई गया तडेच तुनी आंधी हुशारी साबित होईगी म्हणे एक वजी मोठा माणूस ना तोंड माई माणूस जलमले उना आवडच नाही ते हातेस मातीन पोटेस मातीन पायस मातीन मानशे जलमनात आई सांगायला बी थकणार नाही थीन अरे मानशे मानशेस मात दगड टाकायला लागणार दगड टाकाले धरम्मा आंध्या होईल हुशार आपली सुरुष्टी कशी जाई हाई आमले समज समजस असं छाती ठोक सांगीसन त्यासनी पठाडी दिन देव थाई आदम झाया आणि त्यानापाशीन येऊ जाई आणि माणूस आणि बाई असनापाशीन मौर्य माणसे तयार होतच राहणार हाऊ समजा निसर्गना चक्कर माहिती अशी सनबी आंध्याना मायेक धरमनी पट्टी डोळ्यावर बांधी पैज राहिना त्या भरमना मागे तू सांगस पीर्थवी सपाटशे तिनं यज्ञांना कसवर येटोयासारखं गोल आसन तू धुडकाई लावस धरमना नाव खाले खरी खोटे खोटले बी तू दडपी टाक दंडुके शैमा हजारो वरीसपाशीन जसनी डोकं चालावं त्यातले समजासले तू दे तुना मरण आणि गांस पाटना परसाद या पृथ्वीवर माणूसना जलम लिसन बी नाही दाखाडता उना तुले देव मानशेस मान आणि पठाडत उना देव दगडस मानस शे आणि त्याले नाही भज ते पाप होई समद्या पिढ्या नरकमा जातीन असं सांगी तुले दिवसा देवानं सोडी त्यांनी भीमकर
1: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग आपलं खानदेश आपली माणसं
3: गीताई अध्याय 7 प्रपत्ती अथवा ईश्वर शरणता किंवा ज्ञान विज्ञान योग श्री भगवान म्हणाले प्रीतीने आसरा माझा घेऊने योग साधित जाणशील कसे ऐक समग्र मज निश्चित विज्ञानासह ते ज्ञान संपूर्ण तुझ सांगतो जे जाणुनी पुढे येथे जाणावे सेन राहते लक्षावधीत एखादा मोक्षार्थ झटतो कधी झटणार्यांत एखादा तत्वता जाणतो मज पृथ्वी आप तसे तेज वायू आकाश पाचवे मन बुद्धी अहंकार अशी प्रकृती अष्टधा ही झाली अपरा माझी दुसरी जाणती परा जीवरूपे जिने सारे जग हे धरिले असे ह्या दोही पासुनी भूते सगळी जान निर्मिती साऱ्या जगास तद्वारा मूळ मी आणि शेवट दुसरे तत्व नाहीची काही माझ्या पलीकडे ओविले सर्व माझ्यात जसे धाग्या मध्ये मणी पाण्यात रस मी झालो चंद्र सूरी प्रकाश मी ओम वेदी शब्द आकाशी पुरुषी पुरुषार्थ मी मी पुण्य गंध पृथ्वीत असे अग्नीत उष्णता प्राणी मात्रात आयुष्य तपो वृद्धात मी तप सर्वभूतात जे बीज ते मी जान सनातन बुद्धिमंतात मी बुद्धि तेजस्व्यात हि तेज मी वैराग्य युक्त निष्काम बळवंतात मी बळ राहे धरुणी धर्मासती मी भूतात वासना माझ्या तू नितिन्हि झाले सत्वा सात्विकादिक भावते परी त्यात न मी राहे तेची माझ्यात राहती ह्या गुणात्मक भावांनी विश्वमोहुनी टाकिले ज्यामुळे मी न जाणूये गुणातीत सनातन माझी ही त्रिगुणी दैवी माया न तरवे कुणा कासेस लागले माझ्या तेची जाती तरुणिया हीन मूढ दुराचारी माझा आश्रय सोडिती मायेने भ्रांत होवुनी आसुरी भाव जोडिती भक्त चौघे सदाचारी भजती मज अर्जुना ज्ञानी तसेचि जिज्ञासु हितार्थी आणि विभ्वल ज्ञानी वरिष्ठ सर्वात नित्ययुक्त अनन्यजो अत्यंत गोड मी त्यास तोही गोड तसा मज उदार हे जरी सारे ज्ञानी तो मी चिकी स्मये जोडला स्थिर माझ्यात गती अंतिम पाहुनी अनेक जन्म घेऊनी पावला शरणागती विश्व देखे वासुदेव संततो बहुदुर्लभ भ्रमले कामनाग्रस्त धुंडिती अन्य दैवते स्वभाव वश होवुनी तो नियम पाळिती श्रद्धेने ज्या स्वरूपास जे भजू इच्छिती जसे त्यांची तीची तशी श्रद्धा स्थिर मी करितो स्वये त्या श्रद्धेच्या बळाने ते त्या स्वरूपास पूजिती मग मागितले भोग पावती मीची निर्मिले अल्पबुद्धी मुळे त्यास मिळे फळ अशाश्वत देवांचे भक्त देवांस माझे ते मज पावती व्यक्त मी हे चिते घेती बुद्धिहीन न जानुनी अव्यक्त थोर जे रूप माझे अंतिम शाश्वत वेढिलो योग मायेनि अंधार चि जगासमी अजन्मा नित्य मी कैसा मूढ कोणी न ओळखे झाली जी जी ही होतील भूते आहेत आज जी सगळी जाणतो ती मी मज कोणी न जाणती रागद्वेषांमुळे चित्ती जडला द्वंद्व मोहजो संसारी सगळी भूते त्याने मोहुनी टाकिली ज्यांनी झिजविले पाप पुण्य कर्मे करुनिया ते द्वंद्व मोह तोडूनी भजती मज निश्चये झटती आश्रये माझ्या जरा मृत्यू गिळावया ते ब्रह्म जाणती पूर्ण तसे अध्यात्म कर्म ही आदिभूताधिदैवात अधियज्ञांत जे मज देखती ते प्रयाणी ही जाणावी मज सावध अध्याय सातवा समाप्त।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

नेशनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।